ने तो शेते ना का तुम सिम बासा ल सोन से पगे ने हेने ने बुक इलिस दे पर आई दे मो बावा है हां अको स्पेशल गेस्ट कर बुन तागा माओ सी आइडल बी आई एफ एम ल कैस मरी कोई बका ने